0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 6:05ত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में 3री भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री

0: हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The cabinet also gave nod to 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab tomorrow. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. Mr. Modi will lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings, elder brother Lord Balabhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his 2 siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha temple, revered as maternal answer board of Lord Jagannath. The yatra, which starts from the Puri temple, will end at the Sri Gundicha temple, covering a distance of nearly 3 kilometers. Multi-layer security arrangements have been put in place to ensure the smooth conduct of the festival. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাক চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ করিবলৈ আর সরকারি আসনির বিষয়ে অবগত।

0: मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकते हैं।

0: सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल

फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: আপোনালোকে গীতিমালিকা অনুষ্ঠানটি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহুৰ পৰা। অনুষ্ঠানত এইবাৰ শুনোৱা হওক ৰুমি অঞ্জনা চৌধুৰীৰ কণ্ঠৰেটি গীত, ৰচনা হীৰেণ গোস্বামীৰ, প্ৰযোজনা বিপুল বৰুৱা।

0: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
1: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
0: जी,
1: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
0: जी, लेकिन वो कैसे?
1: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
0: जी,
1: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
0: जी,
1: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
0: जी,
1: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
0: जी,
2: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
0: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
2: जी,
0: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
0: जी।
2: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
0: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
2: जी
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
0: जी।
1: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
0: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
2: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
0: अच्छा
2: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
0: डॉक्टर नमिता
1: जी,
0: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
1: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
2: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
1: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
2: जी,
1: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
0: अच्छा,
1: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
0: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
2: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ का

0: कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
1: जी।
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल।
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
2: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी।
2: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी।
2: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी। इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
0: जी बिल्कुल। वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल।
2: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
2: जी।
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
2: जी
1: बिल्कुल।
2: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी।
2: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
2: जी।
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
2: जी।
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: मैं भी कह रहा हूँ। चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
3: जी गुरुजी।
1: समझ गए?
3: जी।

0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ा।
2: जी गुरु जी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरु जी झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
2: गंदे
3: पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी।
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
6: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश भाई। बच्चों तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
6: मास्टर जी।
5: हाँ हाँ बोलो।
6: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर।
5: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिपेक्ष में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
8: दीदी।
9: बोलो मालती।
8: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
8: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
8: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
8: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
8: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की यह शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों

0: की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
2: नमस्ते, नमस्ते बच्चों। नमस्ते
3: दीदी। ये
2: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
4: दीदी, ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
2: अच्छा
5: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
2: सच? प्रवीण, इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
3: गुलाब।
2: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
1: दीदी मैं बताऊंगी।
2: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
3: गुलाब। गेंदा।
2: हाँ
3: चमेली। और
2: हाँ
3: चमेली।
2: चमेली।
3: सूरजमुखी।
2: सूरजमुखी, शाबाश।
0: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
2: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
0: जी जी।
2: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
0: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
2: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
0: बहुत अच्छे।
2: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
0: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
2: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
0: जी।
2: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
0: हल्के नीले रंग के?
2: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
0: अच्छा।
2: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
0: काहे की लिस्ट?
2: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं, और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
0: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
2: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना, तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें, और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना

का चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: राष्ट्रीय शैक्षिक गवेषणा और प्रशिक्षण পৰিষদৰ द्वारा प्रयोजित अनुष्ठान उमंग खुलिले। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু।

0: परात्मन।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का महाबाहु है, प्रस्तुत है कार्यक्रम परागमाला लाइव। नमस्कार श्रोताओं, आज की इस कड़ी में मैं गुना प्रभा बोरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जुलाई के महीने में बारिश के

आगमन से धान की रोपाई और उससे जुड़े लोकगीत हमारी कृषि और सांस्कृतिक परंपरा का एक अहम हिस्सा है। रोपाई के दौरान गाए जाने वाले इन लोकगीतों को रोपनी गीत कहा जाता है। ये लोकगीत कई संस्कारों को लेकर विविध रूप में बनते हैं। लोकगीत और हिंदी फिल्मों का बहुत पुराना रिश्ता है। कई सुपरहिट गीतों की जड़ें सीधे हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी होती हैं। कई ऐसे गीत जो लोकगीत है लेकिन फिल्मों में आकर छा गए पूरी दुनिया में। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत लम्हे फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों ने।

0: स्वास्थ्य विशेषज्ञ देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाइए।
1: RRIH बेतापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: इंग्लिश बिंग्लिश फिल्म का गीत नवराई माजी, जिसे गाया है सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटालिया डिलोसे ने, ये एक बहुत ही प्रचलित मराठी लोकगीत है जो शादी के मौके पर गाया जाता है। नवराई शब्द का अर्थ होने वाली दुल्हन होता है। मायके वाली अपनी बेटी की तारीफ में ये गीत गाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।
3: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची।

फिल्म मिशन कश्मीर का गीत बुमरो भी एक कश्मीरी लोकगीत है। ये लोकगीत भी विवाह के समय होने वाली दुल्हन की मेहंदी की रस्म में गाए जाते हैं।

0: स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परागमाला लाइव। लोकगीत वाकई में हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पद्मावत फिल्म का गीत घूमर राजस्थानी पारंपरिक गायन और नृत्य की अनोखी शैली को दर्शाता है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की आवाजों में।

0: इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का परागमाला लाइव कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: परागमाला परागमाला
2: পরাগমালা লাইভ সুদিলে আগবহালে গুণপ্রভা বড়ায়।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান। এইবাৰ শুনো আহক পত্থৰ কে ফুল চিনেমাখনৰ পৰা লতা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠত এই গীতটি, গীতিকাৰ দেৱ কোহলী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে অৰ্থাৎ এক বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু এক বজি পাঁচ মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মৈ কনকলতা। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़े हुए भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत

0: भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: BIMSTEC's long-standing goals,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में BIMSTEC के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए BIMSTEC पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% of the world population.
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक

0: संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देशभर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में।

0: हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडिया मेभर 411.5 मिटारत एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु एतिया हुनक पाश्चात्य

Yongqing ridin lote phak hijan chi undap uno amahang akke apok lapen amoklang hehe josi wanglorlar po lapen nini nithoma phike alangason tangjanglor po pok sakhi supenta kapa mejia dewai avi lasi kaiki ta phakroi pakreng phunangji lapen bangthe apnangji lapen ajon kiniya phak nenmen kapang reng tanga phakalong pachingoi du namle lapen la so pok sakhi su afanta vaccination a bjk do fmd foot and mouth disease fmd a ki so ang theke la pu hello ade ang tu aso ni ang ham la pen anu kan bithe bitha ta aren chi oisi abang anta so pik po lapen ang hu pen kai ki ta ang kroi ni chen po a an da chi chun edetsi lapen a keng ke dam ta te kong chok po FMD pen ke so phaga phanta akapre aroyanong si denglangji lapen akapre amarat marenga pia phan phakroi along pangui du nong le datsi kene kalite che pangui nong le datsi kene no swine influenza mate phaga tum asing jam la so ki so ta phaga tumang dong e jon le chi unnote chi unda piglo La penjong si phakroi alo tomon chileng pamelong lete kalite tomon kang samlut long seta swine influenza ke so phagaphan unda bolo la so sing jam pera ke so ang thekke la puhelo aprang si ke anji cho chedet si jin lai po la pen achithi chen un pame medet si amek anokan penta amek kri anokan alang ason jang wok po mantu neke kapasi la pen aphuta ke so doji Sinjam ke so pen phagafan kapachire ji ke aroi kaita kreng long nang ji la pen tomon ke ter phagroi pen kapadam pa me ji avar sai ri nang ji la pen a ana lang kang the si pidu nang ji pneumonia pneumonia ke so api ke phiju kalite asana son kang ja ramu atum si ke wan ahut ke munir appe ari ake o balong si pneumonia ke so api nang ke dun lo अंके लसन सी फागफान के उनलो अफाग जों सी निमोनिया पेन सोलो पुलोते मेन मेन अफुसो ओसी अपो कंसे लपेन कचिंग ओक्ता दोपो लपेना आंता चिचो चदेसी अचित हेता वांगोने देतपो कपासी इता थेलोंग जी लसो पोची अंगो पेन से कैता अचित हेगा चे एनसन इन्दी मुंठी लोंग जी निमोनिया की सो कपा मेजी पुलोते एंटीबायोटिक्स अदवाया कोर्सी पीनांग जी लपेन अप्रांग इतुन कचितान दांगासों सी भागरोय काई की ता बांग्थी व्याची पकें क्रोंग लेंजी हिमोएजिक सेप्टिसेमिया लसो की सोता लांग के तेर आआन के तेर लपें तोमोन के तेर पेंसी भागपान की उन जोंग सी अभाग हिमोएजिक सेप्टिसेमिया के सो पेंसी के सो बुलोते अभाग अचे थोगलों कांग ओपो अभूता सो ओसी कपासी इता दोपो आहुत पेन के अच्छी थे कच्चे एंटा शिक्षक पिक पो लासुआ की सोता एंटीबायोटिक्स दवाई कोर्स पेन पम्मे उन्नो सेता अजर की सो पेन तमे पकड़ जीन पेन दवाई पीड़न नो मते लापेन लहाय हाय की सो पेन की थी तंग अपहार अपन पिप पम्मे नंजी लापेन लासुआ की सो पेन कपा जोग जी अपन आ ओके में सेन अपहार अपन वैक्सीनेशन पीड़न नंजी एंट्रेक्स लासो की सोता कसे उरा लांग आआन पिलोते फागफान उंदा उनो कलीते अंग हुआ मेक पेन के जांग लांग जोंसी अका प्रेगा फागफान फोलोते एंट्रेक्स की सोके उंदा उनो लापेन अबांग लांग अमेक पेन ता चिउन थेकलो लासो की सो अंग थेके इली थेक लोंग ले अथेमा अफाक नेन नेन थिनोत पो लपेन एंट्रेक्स के सो अंग थेक थेक लोंग सेता अबांग के सो लपेन अचि थे चेन चेन उन थेक थे दत पो अबांग बिथे ता कांग एसी अंग हो अनो कान लपेन फुबे के दवा दिन पेन ता कंपा क्लेन क्ले अवी केरेंग ली वोय पो एंट्रेक्स के सो पेन का चेन जी के वैक्सीनेशन पे अन चोतलो लपेन एंट्रेक्स पेन के थीता फाक पिप पमे नंग जी लपेन अबांग आ पुन के इन पुनंग ले लपेन फाक रोय लोंग फेनोल माटे क्रिसोल कली ते का प्रेड दवाई पेन पंथिर ए नंग जी ब्रुसेलोसिस बेंस डिजीज लसो की सोता अबांग का चिपो पेन सी फाक तुम अंग बोंग का चि उनलो लपेन का सी उया आना लांग पेंटा चि उंदा बोलो ब्रुसेलोसिस अकिसो अंग थेक के आसो अफिलिया होत्सी अपो प्याकोपन आसो नंग क्लोबुपो लापेन अपाक अपी आसो
মনন ভিয়ন্তা আসন।

खुलुमबाय दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं खगेन बर'आ थांनाय बा बोसोराव रायजोआव जौगानायनि बिथाखाय सुनादों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया आसाम आयेन आफादाव फोसावदों मैया आयेन आफादनि जथुमानि दाइनथि सानाव सदनाव रांबावजानि दान्थे बिदान्थियाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि बिथाङा बे खोथाखौ मुंख'यो रांखान्थि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाया सदनाव दैखांनाय बहैथि रांखान्थियारि बोसोरनि रांबावजाया गासैबो बुजिमोननो हानाय आरो गासैनिबो थाखाय होनना मुंख'ना बिथाङा बुङोदि बे रांबावजाया गावनि सायावनो सोनारनो हानाय आसाम दानायनि लामा खेंनानै होदों बिथाङा गावनि सायावनो सोनारनो हानाय समस्थि दाफुंनायनि बादायलायनायाव गोख्रोङै बाहागो लानो गासैबो एमएलए बिथांमोनखौ हांख्रायदों फैगौ समफोराव रायजोनि गंफ्रोमबो समस्थियावनो दाउदै ना बेदरखौ लानानै गासैबो रोखोमनि जाग्रा मुवा दिहुननो हानाय बायदियै राहा लानो थाखाय बिथाङा गासैबो एमएलए बिथांमोनखौ खावलायदों बिनि अनगायैबो रायजोनि जौगाखांनायखौ गोख्रों खालामनायनि थांखियै गिबि सेटेलाइट नोगोरमा गायसननायनि बिथिङावबो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव मुंख'यो एडभान्टेज आसामनि नैथि जथुमानि जोहै रायजोआव खमैबो 3,00,000 कौटि रांनि रां खाथायनाय जादों होनना मुंख'ना बे रां खाथायनायनि बिबाङा आरोबो बांबावनांगोन होनना बिथाङा बिबुंथियो गावनि बिबुंथियाव बिथाङा आसामनि निखावरिनि हारा 32.68%निफ्राय 14%सिम खमायदों होननानै मिन्थिहोयो रायजोआव हाग्रानि जिब जुनार आरो मानसिनि गेजेराव जुजिलायनाय जर'खायै मैदेर मानसि जुजिलायनाय आरो मोख्रानि खायसे खालामनाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा नेमखान्थि बिथोन दाफुंनायनि राहा लादों आयनाफोरनि लांगोनायाव मैया एमएलए बिथांमोनजों सावरायलायनायनि मोनसे जथुमानि उनाव हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा खौरांगिरिनि

सिगाङाव बे खोथाखौ फोसावो। बिथाङा बुंदि सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिगिनारि आदबजों गोजोर राहा लानो सावरायलायनो लादों। मन्थ्रि बिथाङा बुंदि गोजोर बिथांखिनि बाहागो महरै दंफां लाइफां गायनाय आरो मैदेरि नांगौबायदि थाग्रा खुलि बांहोनायनि बिथिङाव गोनांथि होनाय जादों। रायजोनि माखासे जिल्लायाव मोख्रानि खायसे खालामनाय जेंनानि बांनायखौ बिथिङाव मुस्रि बरुवाया बुङोदि सरकारा बिगियानारि आरो सुबुंथियारि जेंनाखौ सुनायनि थाखाय गुबुन गुबुन राहा आन्जाद नायगासिनो दङ। बिथाङा बुंदि मोख्रानि जाग्रा आदारनि महरै फिथाइ सामथाइनि दंफां गायनायनि अनगायैबो मोख्रानि जोनोमखौ होबथानो हायो नामा बेनि फारसे साननाय जादों। रायजोआव आगस्ट दाननि गिबि सप्तानि गेजेराव जायगानि एमएलएखौ मासिगिरि महरै लानानै मोनफ्रोमबो माइ बायनाय मिरुनि थाखाय सरकारा सायख'ना होनाय सोद्रोमाजों मोनसे कमिटि दानो थाखाय बिथोन होदों। आदार रायजोनि राननाय आरो फाननाय बायनाय बिफाननि मन्थ्रि कौशिग्राया मैया गुवाहाटीयाव खुंनाय रैजारि थाखोनि सावरायमा जथुमायाव बेनि बागै फोसावो। बिथाङा बुङोदि मिरुआरि सरकारजों लोगोसे माइनि खमसिन हेफाजाबारि बेसेनाव रायजो सरकारा होनाय हेफाजाबारि रांखौ जाहाथे आबादारिफोराल' मोननो हायो बेखौ रोखा खालामनांगोन। बेराफारसे थि बेसेननि गलादारफोरा दानफ्रोमबो 20 खालारनि गेजेराव गावसोरनि कमिशनखौ मोननो हायो बेखौ रोखा खालामनो मन्थ्रि बिथाङा बिथोन होयो। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यमैया श्री श्री अनिरुद्ध देव गिलुमु सोलोंसालिनि डिब्रुगढ़ जिल्लानि उद्योगारि भवनाव थानाय गोजोर नङि मावख'खौ नायगिदिङो आरो साबुवानि पानीएरा गामियाव लुफुंनो लानाय खामानिखौ मोन्थिनानै लायो। नायगिदिंनायनि उनाव जानाय सावरायलायनायाव मुलुग सोलोंसालिनि खुंथाया रायजो बेंगिरिनो बिथांनो मुलुग सोलोंसालिनि बायदिसिना जेंनानि सोमोन्दै मोन्थिहोयो। रायजोगिरि बिथाङा मुलुग सोलोंसालिनि लुफुंनाय खामानिखौ हानायमानि थाबैनो फोजोबनो सुबुं लुफुंसार थामहिन बा पाब्लिक वार्क बिफानखौ बिथोन होयो। मुलुग सोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गिलेमु बिफाननि जोहै नांगौबायदि नाजानाय जागोन होननानैबो रायजो बेंगिरिया मुलुग सोलोंसालिनि खुंथायनो खोथा होयो। रायजो बेंगिरि बिथाङा नायदिंनाय समाव मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डॉ हितेन्द्रनाथ शर्मा रेजिस्ट्रार पंकज प्रथाकुर जिल्ला जौगाखां आयुक्त ननिता बरुवा आरो सुबुं लुफुंसार बिफाननि गोजौ थाखोनि मावगिरिया बाहागो लादोंमोन। फिफा वर्ल्ड कप फुटबल बादायलायनायाव थांनाय खेबनि देरहागिरि आर्जेन्टिनाया बे खेबावबो नैथि हान्जा महरै फाइनालाव हाबनो हाबाय। आमेरिका जुथाइ हादरनि आटलान्टा स्टेडियमाव थांनाय हराव गेलेनाय बादायलायनायनि नैथि सेमि फाइनालाव आर्जेन्टिनाया इंलेण्डखौ 2-1 गलनि फारागथियाव फेजेनो। बादायलायनायनि फाइनाल गेलेनाया फैगौ 19 जुलाइयाव स्पेन आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव मियामि स्टेडियामाव जागोन। गेलेनाया भारतनि समबायदियै हरनि 2:30 जागायगोन आरो बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महामहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महामहु दालायनि मिडियाम वेबनि 400.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहार्ट्जआव बे फसंनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्ट्जआव आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्ट्जआव रिले खालामना फसंनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ लोगोसे निउज अन एआर मबाइल एप आरो एआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फसंनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ दिनै स्टोरी दं आं खगेन बर'आ दानदिसे नोंथांमोना दिनैनि जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फैदो साख्रिनि रादाब इन्डियान एयारफर्सआव अग्निवीर बायु मासियाव थिसनथिहोनो थाखाय आर'जलाइ नागिरनाय जादों थिसनथिनि समा 4 बोसोरनि बिनि साया फिजिक्स मेथमेटिक्स आरो इंलिश आयदा लानानै बिगियान दालायाव खमैबो 50% नम्बर लानानै HS आन्जाद उन्थ्रिनाय जानो नांगोन नङाब्ला मेकानिकेल इलेक्ट्रिकेल अट'मबाइल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स कम्पिउटार साइन्स इन्सट्रुमेन्टेशन टेक्न'ल'जि एबा इनफर्मेसन टेक्न'ल'जि दालायाव 3 बोसोरनि फराफारिनि डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन नङाब्ला 2 बोसोरारि फराफारिनि भकेसनेल फराफारि आबुं खालामनाय जानो नांगोन गुबुन गुबुन दालायनि बिनायसाफ्राबो खमै 50% नम्बर लानानै HS आन्जादआव उन्थ्रिसार जानाय जानो नांगोन बिनिसाया 2005 मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्राय 2010 मायथाइनि 1 जानुवारिनि गेजेराव जोनोम मोननाय जानो नांगोन आबुंखारिथि आरो आर'जलाइनि वेबसाइटआ जाबाय www.indianairforce.nic.in आर'जलाइनि जोबथा खालारा जाबाय 26 जुलाइ रेलवे रेक्रुटमेन्ट बर्डआ मोन 6,565 टेक्निसियान मासिनि थाखाय

0: नैजिद' जुलाइ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आ मोन 6565 टेक्नीशियन मासिनि थाखाय आरजलाइ नागिरनाय जादों। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल मासिनि अनजिमाया मोन 323। जागायनायाव दानबान्थाया दानसेयाव 29,200 रां, लोगोसे गुबुन गुबुन बानासबो थाफागोन। बिनि सायाव फिजिक्स, इलेक्ट्रनिक्स, कम्पिउटार साइन्स, इनफरमेसन टेक्नल'जि एबा इन्सट्रुमेन्टेशन आयदा लानानै बिएससि डिग्री थानाय जानो नांगोन, नङाबा बिनि जायखिजाया दालायाव बिइ एबा इन्जिनियारिं डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बिनि सायनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। टेक्नीशियन ग्रेड 3 मासिनि अनजिमाया मोन 6238। जागायनायाव दानबान्थाया दानसेयाव 19,900 रां, लोगोसे गुबुन गुबुन बानासबो थाफागोन। बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। बिनि सायाव HLC आन्जाद उन्थ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो ITI सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन। आबुंखारिथि आरो आरजलाइ गथायनायनि वेबसाइटआ जाबाय www.indianrailways.gov.in। आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 29 जुलाइ। साख्रिनि रादाबा एसेनोसै। बियो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फैदो आबारनि जोथोन आयदायाव। आयदायाव दिनै खोनासंनानै जादों गिबियै फोसावजेननाय सासे जाफुंसार टमेट' आबादगिरि अनिल बर'जों लानायनि बे मोगा मोगिखौ लादों नगेन दैमारिया।
1: बियो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु जों दिनै स्टुडिय'सिम हांखोनानै लाबोनाय जादों सासे राफोद, गोख्रों आरो जाफुंसार

0: जोथोनै बेनिफ्राय एसे फोरमायदो
1: जिहेतु साथि सत्तर दिन दा बेनिसा बेनिफ्राय बिथाय माने महर लाबोयो नालाय दा बेनि उनावहाय जोङो जा दिननिफ्राय गायजेनो दस पन्द्र दिननिफ्राय जों बेवहाय मोनसे ड्रेसिं खालामबाय थानो गोनां जाबोयो आरो मेडिसिन जा स्प्रे ड्रेसिं बेखौनो जों खालामबोबाय थायो आरोखि दा बेयाव माने समखौ जों नायै नायै माने ड्रेसिंखौ खालामबाय थानाय जायो आरोखि
0: बे मुलिया
1: बे मुलिया जाबाय जेनेबा जों गिबि समाव बे भेक्सिनखौ होग्रोजायो फुलि समावहाय ओमफ्राय जा समनिफ्राय बिथाय माने महराव फैगोन बिथायनि बा बे फिथाइनि महराव माने मुलिखौ एसे सुलायना होनो गोनां जायो आरोखि बे समाव एसे पावारनि मुलिखौ जों बाहायनो गोनां जायो आरो दा बेफोर मुलिया जाबाय डाइटेन एम पन्सल्लिस बेफोरबायदिखौ जों बाहायबोबाय थायो आरो दा
0: बेनिफ्राय हासारनि बेलायाव
1: जों दा बेखौनो बुंनांगोन आवगायाव माने जा समाव हालखे होदोंमोन बे समाव जों गोबोर एसेब्लाबो होना लानाया बिराद माने जोंनि थाखाय मोजां आरो दा बेबायदि बेनि उनावहाय सुपार माने जोङो पन्सास केजिसो सुपारखौ जों होग्रोनानै लायो आरो बिगाहायाव दा बेबायदि होयोब्ला जों आबादखौ मोजां रोखोमनि खालामनायनि मोनसे सुबिदा माने मोननो हायो आरोखि
0: अब्ला बे हालेवनाय समाव जा होबाय बेखिनानो
1: ओमफ्राय
0: दंफां देबाय थानाय समाव आरोबाव बे गुबुन होनांगौ जेबो
1: बेयावबो दङ गुबुन रोखोमनि हासार बुङोब्ला जोंथ' दा मोनथाम मोनब्रैसो हासार मोनो आरो रासायनिकबो जेरैबायदि जैबिक हासारबो बुङो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि जायगायाव माने जैबिक हासारखौ मोननो बिराद माने टान आरो मोनानो दा बेनि गेजेरावनो जों रासायनिक हासारखौ बाहायनो गोनां बाध्यता जायो आरो जों डिपि बायदिसिना इउरियाफोरखौनो बुङो आरो दा जोङो जेरैबायदि आङो दा बेयावहाय बिफाङा जि समाव फिथाइ बा फिथाइनि महर फायगोन बे समाव जों डिपिखौ माने अनलि डिपिखौल' बाहायनाय जायो आरोखि
0: बेखौ हायाव गुदियाव माबायदि राहा जों होनाय जायो
1: बेखौ गुदियाव एसे रिं खालामनानै जोङो जे फबना होनांगौ आरो बेखौनो बाहायो आरो
0: दायो नोंथां बै आबादखौ मावनाय समाव बे दंफाङाव जायफोर गाग्लोबग्रा गोबां एम्फौबो थायो जानांगौ ना होमबा बेफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मा राहा लायो
1: गोबां रोखोमनि एम्फौ एनलाबो सोमजियो दा जोङो मिथिखायो नालाय दा जोङो सम सम बेखौ नायनांगोन आरोखि माबे समाव माबे एम्फौ माबे बुस्तुआ जोंनि आबादखौ माने आक्रमण खालामनो बा एम्फौ उपथाग्राया जाबाय बेबायदिनो दङ जेरैबायदि जों बुंनो थाङोबा प्लेथ'रा होननाय मोनसे एम्फौ बेफोर मुलिखौ जों बाहायो आरोखि दा बेफोरबायदि एम्फौनि मुलिखौ बाहायोब्ला माने एसे गोलाव समबो जोङो थानो सम मोनो आरोखि एम्फौआ थाब थांनो हाया आरो बेखौ बाहायबा दा जेरैबायदि बेनि एम्फौनि अनगायैबा आरो बेफोराव बेमार गोबां रोखोमनि बेमारबो फैयो जेरैबायदि लेप ब्लाइट होनना बुङो जायखौ माने फिथाइयावबो गोसोम गोसोम बेमार फैयो बेफोरनि थाखाय जों एसे माने सांग्रां जाखानानै माने थाग्रोनो गोनां जायो आरोखि बे फान्थाव मोखै जे आबादखौ खालामोबा आरो
0: मा मा मुलि बेफोर ब्लाइ
1: दा बे ब्लाइनि मुलिया जाबाय जोङो बेबायदिनो बे भेक्सिनखौ जोङो फुलि गायजेननाय समाव होबाय नालाय दा बेनि बैसो जालांबा जोङो जेरैबायदि रेडमिल बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायलाङो आरोखि दा गोसोम गोसोम बेमारनि थाखाय जोङो रेडमिलखौनो बेस्ट बुंनानै लायो आरोखि जों बिदिनो माने रैखा खालामनो हादों आरो आबादखौ
0: बेफोर मुलिखौ माबायदि राहाजों होनाय जायो
1: एकस' ग्राम रेडमिलखौ जोङो माने गेलान मोनब्रै खालामो आरोखि गेलानाव जाबाय पन्द्र सल्ल' लिटार बेफोरबायदिनि गेलानखौ जोङो मोनब्रै होयो आरोखि
0: आरो दायो नोंथाङा बुंबावदो बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव दंफांनि थाखाय बै समावहाय माबायदि मा मा राहा लानांगौ जायो
1: दा बेफोरबायदि बिफां बा दंफां फुलि बानायजेननायनिफ्रायनो जोङो गोबां राहाखौनो लाबोनो गोनां मोनसे फरिजन थाखायो आरोखि मा जिनिसा माबायदिहाय माने आक्रमण खालामदों माबायदि बुस्तुआ बेखौ माने गाज्रि खालामनो थांदों बेखौ जोङो सानफ्रोमबो माने दिनाव नोजोर लालांबाय थानो गोनां जायो आरोखि दा बेनि उनाव जोङो बायदिसिना औवानि खुन्थियाजोंबो जोङो बे बुस्तुखौ माने मावनानै मोजां रोखोमनि मोजां खालामनो हायो आरोखि आरो बेनि उनावहाय जों दा गोदान मुगा हिसाबै जे मार्सिंनिफ्राय बार जोंना सुबिदाबो मोनसे मोननाय जाबाय नालाय आथिखालनि मुगा हिसाबै जों मार्सिंनिफ्राय बारदों मावो आरोखि आं हाग्राया एसे कम परिमाण बा कम बिबांनि माने जायो आरोखि बेयाव बांद्राय हाग्रा रज'नो सुबिदा मोना आरोखि मार्सिंनिफ्राय बारदों
0: बे मार्सिंनिफ्राय बे हाग्राफोरखौ
1: रज'नो सुबिदा होआ
0: खोबथेनानै लाखिनाय जायो
1: दा बेवहाय जोङो माने मानसि लानो गोनां बा बायदिसिना माबाफोरा एसे माने रैखा मोनो
0: आरोखि
1: खरसायाथ' खमियो आरो मानसि लाबाय थानो गोनां प्रयजनबो जाया आरोखि दा बेबायदि अबस्थायाव जों

0: आबादखो माने सायख'ना लानानै मावनायनि मोनसे थांखिखौबो लानांगौ आरो बा लायो आरो आं बेबायदि
1: नोंथाङा बुङो जेनेबा औवानि खाथि नांगौ जायो होनदों खुन्थिया माबायदि दंफांनि थाखाय आरो बेखौ
0: दंफांनि थाखाय आरो जे औवानि खुन्थियाखौ जाबाय जोङो एसे गोजौ बा सारि फुटसो गोजौ खालामनांगौ आरोखि बेखौ माने गुदियाव एकदम माने गोख्रों दोनानै लानांगौ आरोखि बेयाव दोना लानायनि उनावहाय बिफाङा जितु बा गेरेमसा माने दालाय लाबोगोन बा जौ बोबाय थागोन बे समाव जों रसिजों माने आलाय बोबाय थानांगौ आरो बिनि दालायखौ खाखां बोबाय थानांगौ आरोखि हायाव गोलैयोबा जेहेतु बे बुस्तुआ गाज्रि जाखायो नालाय
1: नोंथाङा दा बे आबादखौ बेसेबांसो हायाव मावदों
0: आबादखौ जाबाय आं दा 4 बिघा 3 बिघा बेबायदि मावो आरोखि
1: बिनि
0: अनगायैबो गुबुन गुबुनबो मावनो बा मावदेरनो गोनां जायो आरोखि
1: नोंथाङा गुबुन गुबुन आबादनिख्रुइ बे बिलाथि फान्थाव एबा बिलाथि मोखै फान्थावखौ माबायदि माने एबा मानो मावनो थाखाय सायख'नानै लाखो
0: आबादारिफोरा जाबायदि मुलाम्फा मोननांगौ बेबायदि मोननायखौ आं माने गावनि गोसोआव माने मोननाय बायदि मोनदों आरोखि
1: दायो नोंथाङा बुंदो फाननायनि बेलायावहाय नोंथाङा बिघाब्रै हायाव बे आबादखौ मावदों ना होमबा जेब्ला खानायनि सम जायो अब्ला बे समावहाय बिघासेयाव नोंथाङा बेसेबांसो बिबांनि एबा लेरथायनि बे फिथाइखौ फाननो हायो
0: दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जा समाव जोङो माने फाननानै मोनो बा बे फिथाइखौ जोङो बिघा मोनसेयाव माने 10 कुइन्टेल 12 कुइन्टेल बेबायदिखौ जों माने मोननो हाखायो आरोखि
1: सप्तासेयाव
0: नङा जोङो सप्तायाव खननै खायो बा खननैनि गेजेराव जोङो बेबायदि माबा 14 कुइन्टेल बेफोरबायदिबो मोनसे प्लास खालामनानै मोननो हायो आरोखि
1: अब्ला बिघाब्रै हायाव नोंथाङा बिघासेयाव 14 कुइन्टेलब्ला 48 46 कुइन्टेल मोननो हायो नङा होमबा
0: मोननो हायो
1: दा बे समावहाय बेसेनफोरखौ माबायदि राहाजों माबायदि बेसेनजों फाननाय जायो बेखौ एसे फोरमायदो खोनासंदोंमोन
0: दा जोङो समनि लोगोआव जोङो जुदि जुन जुलाइ आगस्ट बे समावहाय जों आबादखौ मावोबा जोङो मोजां रोखोमनि माने बाजार भावखौ जोङो मोननो हायो
1: मोननो हायो आरो
0: मोननो हायो आरो दा बेबायदिखौ जों नायनानै मावनो गोनां जायो आरो बा मावनाया बिराद प्रयोजन आरो दा आङो बेबायदिनो एसे मोजां बाजार भाव मोननाय सिस्टेम बा समखौनो लानानै मावो आरोखि
1: मा समाव फानजायो होनदोंमोन
0: जेरैबादि जुन जुलाइ जुलाइ आगस्ट गायो नालाय नभेम्बर अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्रायनो जों फानजेननो मोनो आरो
1: बे समाव बेसेबांसो बेसेन मोनो
0: नोंथांमोना सेप्टेम्बर अक्ट'बर दानावबा जोङो केजिसेयाव माने बुंनो थाङोब्ला 80 थाखा 90 थाखा बेबायदि मोननो हायो
1: अब्ला फाल्लासेयाव
0: फाल्लासेयाव जोङो हमनानै ला 350 400 बेबायदिबो मोननो हायोब्ला गोबां रोखोमनि माने मुलाम्फा जायो आरोखि एसे आगोथिया माने एडभान्स लगायोब्ला मोनखायो आरोखि
1: अब्ला कुन्टेलसेयाव फर्मुल हिसाबै बेसेबांसो जाहैयो बे समाव
0: कुन्टेलसेयावथ' जों दा बुंनो थाङोबा केजि हिसाबैनो हिसाब थाङो नङा होमबा माने 4000 बेफोरबायदियावबो मोननो हायो आरोखि
1: 4000
0: 5000 बेफोरबायदियाव मोननो हायो आरोखि
1: 46 कुइन्टेलावहाय जों कुन्टेल 12000 मोनबाय ना होमबा अब्ला बेसेबां जाहैयो
0: हिसाब खालामबा ओंखारहैगोन आरोखि बेखिनिखौ जोङो दा मुथते बाराखौ माने जों कुन्टेल सिस्टेमै बुङोबाबो जों माने मास मोनब्रै फाननो मोनो नालाय बे फिथाइखौ बे मास मोनब्रैयाव जोङो 2.5 लाखसो फिसा माने मुलाम्फा जायो आरो
1: 2.5 लाखसो मुलाम्फा जायो
0: बेबायदि आरो
1: खरसाबो दाननानै नामा
0: 40000सो माने खरसा जाहैगोन आरोखि
1: अब्ला 2 लाखसोआनो मुलाम्फाया गोरलैनो थायोखाय नङा होमबा मा समावहाय बेनि बेसेना खम जाहैयो
0: दा जोङो बेनि खम जाहैनाय समा जाबाय लास्ट डिसेम्बर माहनिफ्राय माने इथिं दामनि माबाया एसे खिलि मिलि जालाङो आरोखि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओंखारबोनाय जायो नालाय
1: जानो नोंथाङा बे आबादखौ मावनानै खमैनो 2,50,000 रां खामायनाय होननानै बुंनाय जादोंमोन बेयो जाबाय जोंनि गुबुन गुबुन आबादारि बिथांमोननि थाखाय बा जायफोरा गोसो गुदुं जानानै दङ बे आबादखौ मावनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा एबा थुलुंगाखां बाथ्रा दा नोंथाङा बे बिलाथि फान्थावनि जायफोर फिथाइ बे फिथाइनि हाथायखौ नोंथाङा माबायदि माबायदि सामलायो
0: दा आङो बेफोर फिथाइखौहाय आङो गावनो फानो आरो
1: खुस्रा
0: जे आङो गावनो फाना बेखौ बेफारिनो जे माने बेफारि लाखायो आरोखि
1: खरसानि बिथिङावहाय जोङो मा मा बिथिङाव खरसा खालामनाय जायो एबा खरसा खालामनांगौ जायो बेनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथाङा
0: बायदिसिना बिदानखौ जोङो बायनो गोनांबा बेयाव बेफोरबायदियाव खरसा जागोन बा बायदिसिना मोनसे दुरुं बा बायदिसिना औवा बायनो गोनां जायोब्ला बेफोरबायदियाव जों खरसखौ खालामनो गोनां जायो आरोखि बेबायदिनो माने बुस्तुखौ

0: जों बायनोबो गोनां माने जे जिनिसखौ जों बायनानै लाबोनो गोनां जायो बेफोरबायदि खरसा जायो आरोखि हासार बायदिसिना मुलि बेफोरबायदि जिनिसखौ जों बायाबा मोना नालाय बेफोरखौ बायनो गोनां जायो दा बेफोरबायदियावनो खरसाखौ जों माने बाहायनो गोनां जाबोयो आरोखि मानसिफोर लायोब्ला हाजिरा खामलाफोर लायोब्ला बेफोरबायदियाव बेसेनिखौ गारनो गोनां जायो आरोखि खरसखौ
1: दायो जोङो गुबुननि सायदाव फैनोसै नोंथांनि बे आबाद मावनायखाय नोंथांखौ हेफाजाब होग्रा सोरबाफोर दङ नामा न'खराव होन एबा गुबुन सोरबा
0: आबाद मावनायनि बिथिङाव गुबुन मावनायखौनो नायखोमानानै बा सोलोंखोमानानै लायो आरोखि बेबायदि नाजानानै जों बेखौ एसे एनै माने सम बाय सम माने रोंबोदों आरोखि दा आरो बेनि बिथिङावनो जों गाव हारसिङै जुदि हायाब्ला सोरबा लोगो बा आबादारि मावग्रा बा रोंग्रा आबादारिनि गेजेराव एसे एनै बेनि आदब खायदाफोरखौ सोंनानै लायो आरोखि
1: लोगोसे न'खरनिफ्राय
0: थानायजोंनो माने मावनाय जायो आरोखि
1: अब्ला नोंथांनि बे खामानियाव नोंथांनि बिसिया जोबोरैनो हेफाजाब होयो
0: औ हेफाजाब होयो माने जथेस्थ' माने मोजां रोखोमनि हेफाजाब होयो आरोखि नैबे समाव आरो
1: दायो जोङो फैयै फैयै जोबथा देखायनोसै आथिखालाव जोंनि समाजाव गोबां लेखा गोरों फरा गोरों दंसै बिथांमोना साख्रि बाख्रि नागिरदोंब्लाबो मोन्थ'नो हायाखै हिन्जावसा जा हौवासा जा नोंथाङा बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुबैयो
0: फरायनाय बिथिङावबो गारनाङा बा एसे एनै साख्रि बायदिसिनाफोरावबो नाजानायखौबो गारनाङा बा आबाद मावनायनि बेलायावबो माने गोख्रों माने मुखुब समखौ माने बाहागो लायोब्ला आंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावफोरखौबो माने एसे लुगैयो आरोखि मोजां लामाथिं माने गसंथिनानै थांनो जोंनि गेजेराव माने लेखा फरायनानै जाहाथे ओरैनो माने बेकार बा ओरैनो सम माने हगार हरनाय माने फंबायमोन जे दङब्ला बेफोरबायदि फंबायमोनाबो जाहाथे आबादनि बिथिङाव माने जोङो माने गोख्रों नाजालाङोबा गाव न'खरखौ माने एसे बा गाव सलिलांनो थाखाय राहा लामाखौ मोनगोन होननानै आंनिसिम माने आसा
1: नोंथां बर' जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोबनायाव नोंथांनिसिम जोंनिफ्राय आरोबाव खेबसे खुलुमनाय आरो मान बाउनायखौ जासिनानै दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ एसेनो फोरमायना जाबाय गोजोन्थों
2: एसेसो नोंथाङा दिनैनि आबादारि जोथोन आयदायाव गिबियै फोसावजेननाय सासे जाफुंसार टमेट' आबादगिरि अनिल बर'जों लानाय मोगा मोगि खोनासंनो मोनबाय मोगा मोगिखौ लादोंमोन मकेन दैमारिया बेजों लोगोसे दिनैनि आबादनि जोथोन आयदायाबो एसेनोसै बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फैदो रेशमा खौनि आयदायाव आयदानि गिबियावनो खोनासंदो सुलेखा बसुमतारिनि गारांनि बे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा उत्तम चन्द्र खेरखाथारिनि

मेथाइनि आयदा रैसुमैखौ आं खोनासंनो मोनगासिनो दङ आगाजबानि गुवाहाटीयाव महाबाहु बर' आफादनि गेजेरजों आयदादानि खोनासंबावदो मनमति बर'नि गारांआव नैबे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा कातिन्द्र स्वर्गियारिनि

गोला बसुमतारीनि गाराङाव बे गोदान मेथाइजों लोगोसेनो दिनैनि रेसिमेखौनि आइडियाबो एसेनोसै बेयो आकाशवाणि गुवाहाटी महाबाहु सम जानानै फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बहरफिननानै दिनैनि बर' आफादखौ सोंथुमगिरिनाय जाबाय गोजोन्थों

0: ট্ৰান্সমিটাৰত অজয় আনন্দ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন, এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰত বিজয় দাস আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই হেমন্ত চাপক ধৰা। হিন্দী কথিকাৰ অনুষ্ঠান। আজিৰ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলক শুনাবলৈ লোৱা হৈছে দীপিকা ধৰৰ কথিকা ত্ৰিপুৰা কি সংস্কৃতি।
1: आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोक गाथाएं हैं। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में राजमाला गाथाओं तथा इतिहासकारों के वर्णन से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका आर्थिक अर्थ पिता होता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों को बार बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराज बीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचों को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया, जिसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। शुरू में यह भाग सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। कृषि और संबंध क्षेत्र राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36% मूल्य का योगदान देता है। प्रमुख कृषि फसलें धान, मक्का, पोषक अनाज तथा काले चने, मटर और अरहर जैसी दालें और तिल, सरसों व मूंगफली जैसे तिलहन हैं। निचले इलाकों में पारंपरिक खेती के अलावा राज्य के ऊपरी क्षेत्र जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल है। धान प्रमुख फसल होने के नाते सकल फसल क्षेत्र का यह 54% हिस्सा है। धान की फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2023 से मुख्यमंत्री एकीकृत फसल प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया है। राज्य भूमि रिकॉर्ड और रियल टाइम फसल सर्वेक्षण की गतिशील लिंकिंग के साथ एकीकृत किसान डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है। जैविक खेती को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिकतम किसानों को लाने, पीएम किसान के तहत नामांकन, सभी किसानों को ऋण सहायता, किसानों को तकनीकी ज्ञान पहुंचाने के लिए कृषक बंधु केंद्र की स्थापना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक उपयोग की प्रोत्साहन करने, अधिक लाभकारी और प्राकृतिक अनुकूल फसलों के साथ फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने और बेहतर बाजार ढांचे और लिंकेज को लागू किया जा रहा है। राज्य की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां, उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर वर्षा होने के कारण कृषि फसलों के अलावा फलों, सब्जियां, मसालों, बागवानी फसलों और फलों की खेती के लिए वर्ष भर अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। त्रिपुरा का अनानास अपने स्वाद और सुगंध के लिए देश में सबसे अच्छा माना जाता है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 2,55,241 हेक्टेयर है, जिसमें से 1,20,624 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा के तहत लाया गया है। राज्य सरकार दूध, मांस और अंडे के उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है। विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं। बीमार पशुओं के लिए 13 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां द्वार पर उपचार की सुविधा प्रदान कर रही है। 2023-24 में मुख्यमंत्री प्राणी संपद विकास योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रगतिशील पशुपालकों को मुख्यमंत्री प्राणी पालक सम्मान निधि से सम्मानित करना, बैकयार्ड मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और पशुओं, पक्षियों आदि का हानि पर नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करना है। बागवानी की बात करें, त्रिपुरा उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर वर्षा के साथ विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों का लगभग होने के कारण कृषि फसलों के अलावा वर्ष भर बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जियां, मसाले, वृक्षारोपण फसलें, फूलों की खेती, इसके अलावा कटहल, केला, खट्टे फल आदि की अच्छी मात्रा में उत्पादन करने के अलावा राज्य में ड्रैगन फ्रूट जैसे नए विदेशी फलों का खेती की जा रही है। स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा 3 स्तरों में विभाजित है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क, जिला और उपमंडल अस्पतालों को शामिल करने वाली द्वितीय देखभाल प्रणाली और विशेष और सुपर स्पेशलिटी देखभाल प्रदान करने वाली तृतीय अस्पताल शामिल।

0: गरीबों के लिए त्रिपुरा स्वास्थ्य आश्वासन योजना परिवार फ्लोटर आधार पर 1.15 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जिसमें अगरतला से सूचीबद्ध अस्पताल तक यात्रा के दौरान होने वाले परिवहन खर्च भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने दो उप मिशनों राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को समाहित करता है, जिसमें मुख्य कार्यात्मक घटकों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, प्रजनन मातृत्व, नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य और पोषण और शहरी क्षेत्र में संचारी और गैर संचारी रोगों का प्रबंधन शामिल है। और NHM का उद्देश्य सभी के लिए समान, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जो लोगों को जरूरतों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाती हो। कला और संस्कृति के मामले में त्रिपुरा की सदियों से एक समृद्ध परंपरा रही है। भारत में विलय के बाद त्रिपुरा अपनी जीवन समृद्ध और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को संजो रहा है। इस संबंध में त्रिपुरा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज और अगरतला ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। त्रिपुरा अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर के मामले में सबसे खूबसूरत और समृद्ध राज्यों में से एक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.03% भाग वन क्षेत्र है। त्रिपुरा का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 6,295 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 4,175 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 2 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन और 2,705 वर्ग किलोमीटर असंशोधित वन शामिल हैं। 2021 में त्रिपुरा अगरवुड नीति अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर अगरवुड की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। यहाँ के वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार और नम पतझड़ी वनों में रूप में एक हैं। बांस के बड़े हिस्से भी शामिल हैं, जो स्थानांतरण खेती के प्रभाव से उपपरिपक्व क्षेत्र बनाते हैं। अपने अनूठे भौगोलिक स्थिति और जलवायु कारकों के कारण राज्य में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की समृद्ध विविधता है। त्रिपुरा हुलाक जीवन, गिद्ध, स्पेकल लंगूर और हाथी जैसे कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा हॉर्नबिल जैसे विशिष्ट प्रजातियां भी यहां पाई जाती है। राज्य में भारत सरकार की नगर वन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य शहरों में हरित स्थानों का निर्माण करना, स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा राज्य में 5 जैव विविधता धरोहर स्थल भी अधिसूचित किए गए हैं।
1: हिंदी कथिकार अनुष्ठान श्रोताসকলে ইমান পৰে দীপিকা ধৰৰ কথিকা ত্ৰিপুৰা কি সংস্কৃতি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো অনুপ জলতাৰ কণ্ঠৰ এটি ভজন।

0: চন্দনদাসৰ কণ্ঠৰ গীতিৰে সামৰা হ'ল আমাৰ আজিৰ আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানটিৰ। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতেই সামাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2रा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार।

0: विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है।

0: प्रवेश अड़ियचा आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी

0: सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेसो स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। লগতে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ আছে নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো।
3: বেমাৰ ভাল হোৱাৰ পৰা বৰ ফুটনি দেখোন তোৰ। কথাটো কি?
4: নহব কিয়, হোমিঅৰ চিকিৎসাই মোক নতুন জীৱন দিলে যে।
3: তাৰ মানে?
4: মানেটো হল হোমিঅপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান।
3: তাত কি হয়?
4: হেৰ নহয় কি, যক্ষ্মা ৰোগ ধৰা পেলোৱা, মাতৃ শিশু তথা সাধাৰণ বহিৰ্বিভাগ, সুলভ চৰকাৰী হাৰত ঔষধ প্ৰদান আৰু পৰীক্ষাৰ লগতে বিনামূলীয়া পৰামৰ্শ। আৰু তোৰ যদি BPL কাৰ্ড আছে তেতিয়াহলেতো গাখীৰতে মহৰ খুটি।
3: মানে
4: তোৰ কাৰণে সকলো বিনামূলীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে 50% ৰেহাই।
3: তেতিয়াহলে ফুটনি মৰাটো তোৰ এক্তিয়াৰ।
5: হোমিঅপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ভেটাপাৰা, গুৱাহাটী।
6: আর্থিক জরুরি অবস্থা কেতিয়া আহি পড়ে হেয়া আগতীয়াকৈ কেতিয়াও কব নোৱাৰি। এনে সময়ত বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত ল'লে যিকোনো অসুবিধা সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি।
7: বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সকলোৰে বাবে মনমাপুৰম ফাইনেন্সলৈ আহিছে ইজি EMI গোল্ড লোন স্কিম।
6: এতিয়া আপুনি মাহিলী কিস্তিত সুদ পৰিশোধ কৰিব পাৰে।